0: Teacher dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood.
1: Mom, take a chill pill.
2: Yes, ma'am. English में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है.
0: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
3: Ya boss.
4: Got the man with the pen right here. Bringing swagger with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
6: Ma, siapa yang nak dengar lagu Koli Boli? Bolehlah hantarkan WhatsApp kat kita 0103207488. Terus layan Pahang FM 1.5.
7: Radio Malaysia Pahang FM.

0: take a chill pill.
1: Yes ma'am, English में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है.
2: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu malam hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
3: Ya boss.
4: Got the man with the plan right here. Bring it swagger down man right here. Living up on sipping on beer. Yeah,
5: clap for me. Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.